0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

मैंने अपने फोन पर तुम्हारा नाम डीजी रखा है एंड आई वाज लाइक डीजी बट मेरा नाम तो रोशी है, यू कैन बेस्ट कॉल मी मिर्ची रोशी बट डीजी क्या होता है? एंड अ गाय गोज अहेड एंड सेज डीजी इज शॉर्ट फॉर ड्रीम गर्ल, तो मेरी ड्रीम गर्ल जो हो. एंड आई वाज लाइक मन में मैं ये सोच रही हूँ कि आई डोंट नो वेदर टू फाइंड दिस क्यूट और फाइंड दिस क्रीपी, क्योंकि मैं इस बंदे को डेटिंग ऐप पर मिली थी. वी ओनली जस्ट चैटेड फॉर लाइक 5 days. हमने कभी फोन पर भी बात नहीं की है, सिर्फ डेटिंग ऐप पर कॉन्वर्सेशन की है. हमारे पास एक दूसरे का फोन नंबर नहीं है एंड ही इज ऑलरेडी कॉलिंग मी हिज डीजी. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड अप्रिशिएट इट और रन फॉर माई लाइफ. आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? इस बंदे को ब्लॉक या इस बंदे के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज? एंड वट एवर द आंसर टू दैट इज, विच आई एम रियली क्यूरियस टू नो बाय द वे, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, वी विल गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स

Mitchie. It's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, अ स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साड़ी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साड़ी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna ho, kissa, kahani, kuch bhi batana ho. @RJKanika on Instagram par aake quickly hit me up. गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेज को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: हाँ वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ते हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 6 6 6 6

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक। गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, स्वागत है आपका। This is the Ghana Indie Top 10। बदी का नाम है RJ Kanika। Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना suggest करना हो बिंदास आके बताओ। It's time for our favorite part of the show. It's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic।
0: हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। The song we featured last week was

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अश्काय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

The one and only तेरा मेरा प्यार by कुमार सानू. ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात. आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट. एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट. This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video. मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे. What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है. So first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को एनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक. दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Dude, I almost feel embarrassed the way this song makes me blush. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है बट है ऐसा ही है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये कुमार सानू की आवाज में दैट वॉज तेरा मेरा प्यार अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन एट RJ करिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s अ इंडी पॉप सॉन्ग मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन एट RJ कनिका एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक Now back to the countdown. अगले वाले गाने की तरफ संजू राठौर is back and how this time with bangles. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके bangles is playing right next for you on गाना नंबर 5. You are listening to गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट
2: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: दिलजीत दोसांझ एंड सिया की आवाज, डेविड गेटा का प्रोडक्शन, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन तीन आर्टिस्ट का नाम एक सांस में लूंगी, बट दैट इज 2026 का म्यूजिक सीन फॉर अस।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Karenga ke saath, this is the Gaana Indie Top 10. Only show on Mirchi, jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Yahan par hum aane wale gaano ko discuss karte hain. Kaun naye

लगता है इन। गाना नंबर चार पे हमने दिलजीत एंड सिया का गाना सुना रांझा, विच इज सच एन आइकॉनिक कोलैबोरेशन। इंडियन इंडी पॉप में भी हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोलैब्स देखे हैं। वी हैव स्पोकन अबाउट डिवाइन करण औजला का स्ट्रीट ड्रीम्स, देयर इज बादशाह दिलजीत दोसांझ, बट देयर इज वन कोलैब जिसके ऊपर मैं आज एक बड़ी वाली स्पॉटलाइट मारना चाहती हूँ। इट्स बाय दीस टू इनक्रेडिबल आर्टिस्ट कॉल्ड अकासा एंड आस्था गिल। गाने का नाम है नागिन एंड इट वाज सच अ रेजर इन 2019। नागिन में अकासा एंड आस्था दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को लेकर आती हैं। कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर रहा है, बल्कि वो गाने में इतने मजे कर रही हैं दैट हमें भी सुन के मजे आते हैं। इंडिविजुअली आस्था गिल अप टू दैट पॉइंट वाज नोन फॉर दिस सॉन्ग। On the other hand, Akasa is such a versatile artist. वो high energy, intensity वाले गाने भी गा सकती हैं and बहुत प्यारे love songs like this one. दिल ना जाने एंड ये दोनों आइकॉनिक आर्टिस्ट आती हैं टू क्रिएट नागिन, विच आई एब्सोल्युटली लव। इवन 2019 से 2026 तक आई कैन नॉट नेम अ लॉट ऑफ फीमेल डुओ पॉप सॉन्ग्स। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हियर्स मी पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स, आस्था एंड अकासा, वी नीड अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम यू। दिस इज नागिन ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: पॉप कल्चर मोमेंट है ये गाना, सुन के ऐसे नॉस्टैल्जिया भी लग रहा है एंड बहुत नया भी है। आज तक की लकाजा की आवाज में दैट वाज नागिन। एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो। 2 साल पहले सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल, द टू लीडिंग पॉप स्टार्स का एक गाना आया था, दे कोलैबोरेटेड टुगेदर ऑन अ सॉन्ग। गाने का नाम मुझे आके बताओ। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी। दिलजीत दोसांझ once again with his song Dealer, 14 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके Dealer is this week on गाना नंबर 3। You're listening to गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। Enjoy।
1: Number 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाएं, कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है या किसी गाने के बारे में कुछ सवाल है, होते हैं यार, अनटशंट आते हैं पर मजे आते हैं मुझे, @RJKanika पर आओ बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट बिफोर दैट लेट्स डू अ राउंड अप राइट फ्रॉम द टॉप। अनूप जैन का अर्ज किया है वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: कायरे जो थे वो शायर बने।
1: नई नवेली एंट्री हर्ष नुसी का साडी सुन ऑन गाना नंबर 9। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 8। एमसी स्क्वायर का लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन गाना नंबर 7। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत येट अगेन विद डीलर ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, मिट्टा रोर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा कंपोज्ड बाय मिट्टा रोर दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, द ब्रेक थ्रू हरियाणवी ट्रैक, गाने का नाम है बैरन बाय बंजारे। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके बैरन इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। शीशा एंड बैरन दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 2।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट्स गो क्रेजी।

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
3: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpai ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर ये गाना किसी छोटी फिल्म का हिस्सा ना होता तो शायद आज और ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे होते, और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं। जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है, और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते। कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था।

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 70.

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: या फिर एक और टूटे दिल की आवाज।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: या फिर ये वाला एंथम।

0: माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है ए आर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। यू हर्ड दिस सॉन्ग इन रावण, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5। वाओ।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोग ये है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहाँ हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कम बैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फैमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th वीक एट नंबर 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाए

0: Energy, it's hot.
1: साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते

Mirchi. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां ली भंग होगी।

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

देखो, अलार्म क्लॉक और इंडियन मॉम्स में ना एक मेजर डिफरेंस होता है. अलार्म क्लॉक जो है वो तुम्हें कभी चप्पल से नहीं मारेगी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग. आई होप मम्मा नहीं सुन रही अभी. आज का तुम्हारा फेवरेट शो शुरू हो चुका है, नया नया दिन शुरू हो चुका है, और अभी फिलहाल तुम शुरू हुए हो या अभी तक बेड पर लेटे पड़े हो या फिलहाल ऑलरेडी ट्रैफिक में अटके हुए हो या परौंठे पलट रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम करने का प्रिटेंड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ में चिपक के बैठने वाली हूँ. अगले कुछ घंटों में हम बॉलीवुड के बिगेस्ट हिट सुनने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, फिल्मी गॉसिप, फन कॉन्वर्सेशन और वो देसी वॉर्म्थ जो सिर्फ एक फेलो देसी ही फील कर सकता है. सब कुछ आ रहा है यहीं पर. एड्रेस है मिर्ची और सुनने वाले हो तो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

सोनी मॉडल लगदी मॉडल जैम च रहिंदी, छोटे मोटे लोकां नाल मिले नाले छोटी मोटी गड्डी च।

doctors. कभी नोटिस किया है हिस्ट्री जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होती है, एक मैसेज इंस्पिरेशनल होता है और अगला ही शॉकिंग हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और हिस्ट्री की बात चली रही है तो लेट्स फाइंड आउट आज का दिन क्यों स्पेशल है। 2nd of July, सबसे पहले चलते हैं 1776 में जब अमेरिका के लीडर्स ने ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के फेवर में वोट किया। फन फैक्ट ये है कि जॉन एडम्स को लगता था लोग 2nd of July सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सरप्राइज 2 दिन बाद वाला डेट चुना गया फाइनली। एंड 1964 में प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट साइन किया, अ हिस्टोरिक लॉ जिसने रेस, रिलीजन, जेंडर और नेशनलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल बना दिया। फिर आता है 1976 जहां पर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम ऑफिशियली एक देश बन गए। हिस्ट्री में आज के दिन का एक बहुत इमोशनल चैप्टर भी है। 1990 में हज के दौरान मेका टनल ट्रेजेडी में हजारों पिलग्रिम्स ने अपनी जान गंवा दी। आज के दिन हम उन सबको रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। देखा एक दिन में कितना कुछ हुआ था पास्ट में, लेकिन आगे आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स जस्ट फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कभी लाइफ ने तुम्हें इतना सरप्राइज किया है कि तुमने सोचा हो प्लॉट ट्विस्ट हो जाए और प्लॉट ट्विस्ट हो गया हो? गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: कल का बिगेस्ट फुटबॉल थ्रिलर था इंग्लैंड वर्सेस डीआर कांगो। मैच की शुरुआत में ही डीआर कांगो ने 7th मिनट में गोल मार दिया और इंग्लैंड फैंस की कॉफी भी ठंडी हो गई। लेकिन एंटर कैप्टन हैरी केन, यानी कि फुटबॉल का सर्टिफाइड मेन कैरेक्टर। पहले 75th मिनट में इक्वलाइजर और फिर 86th मिनट में एक स्टनिंग विनर। फाइनल स्कोर था इंग्लैंड 2 डीआर कांगो 1। इंग्लैंड सर्वाइव कर गया है, अब राउंड 16 में को-होस्ट मेक्सिको से टकराएंगे इन व्हाट प्रॉमिस to be a blockbuster knockout clash. और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, कल बेल्जियम ने एक्स्ट्रा टाइम में सेनेगल को 3-2 से हराया, जबकि यूएसए ने बॉस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से बीट करके राउंड ऑफ 16 का टिकट भी पक्का कर लिया है। फुटबॉल फैंस, अब टूर्नामेंट ऑफिशियली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, ये तो तुमको वैसे पता ही होगा। ऐसे स्पोर्ट्स अपडेट्स तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

आज का वेदर ना इतना ड्रामेटिक ऐसे बॉलीवुड में सास का रोल मिल सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। चलो जल्दी से देखते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर आज की वेदर रिपोर्ट। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 79 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील हो रहा है अराउंड 82 डिग्रीज फारेनहाइट। इतना डिफरेंस। वैसे दिन भर रहने वाली है सनशाइन की सनशाइन, कोई रेन चेक नहीं है। लिटरली पिछले 24 घंटों में जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है। मतलब आज अगर तुम बारिश के चलते अपने कोई प्लान्स कैंसिल करने वाले थे, किसी डेट से बाहर निकलने वाले थे, इट्स नॉट गोना वर्क सैडली। लेकिन आफ्टरनून तक मर्करी 101 डिग्रीज तक पहुंच सकती है और फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 104 डिग्रीज फारेनहाइट तक। मतलब आज ह्यूमिडिटी, धूप और हवा मिलकर थोड़ा मिर्चीदार बन रही है, यानी कि हॉट हॉट फील कराने वाले हैं तुमको। और एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप है, आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों इन इफेक्ट हैं थ्रू सैटरडे इवनिंग। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी ना हो तो घर पर बैठो एसी के अंदर, और अगर जाना जरूरी है तो अपना पानी साथ में कैरी करो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 50++++ के साथ वाला, एंड ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनो ताकि तुम्हें जब गर्मी लगे तो तुम अपनी लेयर्स उतार सको। जैसे कल का हाई 98 डिग्री फारेनहाइट तक था और आज 101 डिग्री फारेनहाइट तक जाने वाला है, तो वेदर को लगता है थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया है। एंड लेट्स ऑल्सो ग्रेजुएट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। बोले तो मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मेरे सोशल्स इंस्टाग्राम और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नमस्ते, सलाम एंड गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. जरा अब हम सुनने वाले हैं मिर्ची आवर का 3. सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नए एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर से गिफ्ट हुआ ये एयरक्राफ्ट लग्जरी इंटीरियर्स के लिए काफी चर्चा में है. फ्रॉम प्लश कार्पेट्स टू लाइव फ्लैट सीट्स, सेफ टू से ये फ्लाइट डेफिनेटली इकोनॉमी क्लास वाली फीलिंग नहीं देती है. नंबर 2 पर इंडिया और जापान की डिप्लोमेसी में एक वार्म मोमेंट देखने को मिला है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वार्मली वेलकम जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए टाकाइची, कॉलिंग हर छोटी बहन. उन्होंने स्पीच की शुरुआत कोनिचीवा से की और एंड किया आरिगातो गुजाइमासु के साथ. एंड फाइनली नंबर 3 पर फुटबॉल फैंस, मेक्सिको की वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेशन इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की जंपिंग और चीयरिंग से नियर बाय साइस्मिक स्टेशन ने ग्राउंड वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लिए. लेकिन रिलैक्स, ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, बस फैंस के एक्साइटमेंट रिक्टर स्केल पर ओवर अचीवर की तरह रिकॉर्ड हो गए. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टा और एक्स पर जाओ तो ढूंढो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब एक टेक अपडेट का टाइम आ चुका है. व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लाने की तैयारी में था, जिससे लोग बिना अपना नंबर शेयर किए ही एक यूजर नेम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. साउंड्स फेमिलियर? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया वाइब्स है. एंड प्रिटी मच द आइडिया दैट टेलीग्राम हैज, उसको पूरा कॉपी किया गया है. लेकिन अभी इस फीचर पे पॉज लग गया है. क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा से इस फीचर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा है और रोल आउट को फिलहाल रोकने को, पॉज करने को कहा गया है, जब तक कि कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. अब इसका आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट भाग रही है उतना ही फास्ट उसके रूल्स एंड डिस्कशंस अभी इवॉल्व नहीं हो रहे हैं. बहुत सारे हिडन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं. जैसे देसी लोग जो है ना, वो नंबर, यूजर नेम, पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल सब कुछ निकालने में एक्सपर्ट्स होते हैं. डोंट यू अग्री विद मी? जैसे अगर तुम्हें किसी का यूजर नेम पता करना होगा तो तुम किससे पूछोगे? तुम्हारे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कौन है वो गॉसिप किंग और क्वीन? लेट मी नो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. यहाँ डीएम कर सकते हो. व्हाट्सएप करने के लिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सुनो, अब टाइम हो चुका है कि तुम्हारे बर्थडे ट्विंस कौन कौन है वो पता करें। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में, एंड सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विद झप्पीज एंड पपीज। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो तुम शेयर कर रहे हो मार्गो रॉबी के साथ, यस द फॉरएवर बार्बी, एंड साथ साथ में अनदर ब्यूटीफुल डीवा फ्रॉम हॉलीवुड लिंडसी लोहान, वो भी आज ही बॉर्न हुई थी, एंड देन डिज्नी फैंस एशली टिस्डेल, एंड म्यूजिक लवर्स के लिए सिंगर मिशेल ब्रांच एंड हमारी अपनी शर्ली सेठिया। कॉमेडी किंग लैरी डेविड भी आज ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो एक बात याद रखना कि बर्थडे जो है वो सिर्फ एज बढ़ाने का रिमाइंडर नहीं होते थे, प्रूफ कि दुनिया उस दिन थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो गई थी जिस दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो केक खाओ, कैलोरीज को आज लीव पर जाने दो और खुद को सेलिब्रेट करो, बिकॉज यू डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड। एंड तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेलिस्ट लेकर आ चुकी हूँ मैं, बोले तो प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड अपने बर्थडे शाउट आउट मुझे भेज सकते हो तुम यहाँ पर। ऑफकोर्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: दिस इज प्रिसिला विद यू मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था.
3: शशि वो मैनहट्टन है.
2: मैनहट्टन
4: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी.
3: टैन मतलब वो धूप की छाप.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अरे 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की रिपोर्टेड वेडिंग की डिस्कशन फुल स्विंग में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलिब्रेशन की कॉस्ट 15 टू 20 मिलियन डॉलर्स तक जा सकती है, और एक देसी कनेक्शन भी है। रिहर्सल डिनर रिपोर्टेडली इन्फोसिस थिएटर में होने वाला है एट मैडिसन स्क्वेयर गार्डन। मतलब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, एक इंडियन टच तो हर शादी में बनता है। नंबर 2 पर किंग खान इज प्लेइंग अ रॉयल इनिंग ऑफ द फील्ड। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड अनवेल किया है। ये स्टेडियम मेजर लीग क्रिकेट का होम ग्राउंड होगा, एंड एलए ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट मैचेस होस्ट करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने मैच जीतने के साथ साथ इंटरनेट भी जीत लिया है। ब्रेक के दौरान उन्होंने एक बॉल गर्ल से शर्ट का टैग कट करवाया और फिर मजाक में ऐसा एक्ट किया जैसे सीजर्स से उन्हें चोट लग गई है। बॉल गर्ल एक सेकेंड के लिए बिल्कुल ही फ्रीज हो गई, फिर नोवाक खुद ही हंस पड़े। मैच भी जीत लिया, प्रैंक भी वायरल हो गया। आई मीन, कैन समवन स्टॉप दिस गाय? दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन पार्ट वन।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इट इज यानी कि मेष राशि। आज सबको पुश मत करो यार, अगर टीम स्लो चल रही है तो सोलो फ्लाइट मारो। हीरो एंट्री अकेले ही होती है। लकी कलर इज क्रिम्जन रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन रिलैक्स, परफेक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर्स में होता है। लकी कलर इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 14। जेमिनी यानी मिथुन राशि, बिग चेंजेस आ रहे हैं, नर्वस मत हो, ट्रेलर देखकर थिएटर से कोई बाहर नहीं निकलता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, जो इश्यूज पेंडिंग है उसको आज टैकल करो, बिल्स और प्रॉब्लम्स दोनों को इग्नोर करने से खुद सॉल्व नहीं हो जाएंगे। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 5। लियो यानी कि सिंह राशि, किसी से थोड़ी खटपट चल रही है, आज ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर दो। देखो लाइफ तो शॉर्ट है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा और शॉर्ट होना चाहिए। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, एक गोल चूज करो और उसके पीछे फुल डेडिकेशन से लग जाओ, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। लैवेंडर इज योर लकी कलर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 1। कुछ गानों के बाद आऊंगी पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए तुम मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून and stay hot.

0: देखो यूनिवर्स का डीएम आया है, तुम्हें बताने आई हूँ मैं, बोले तो प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स लेकर राशि जोन पार्ट द्वितीय।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, करियर में नए डोर्स खुल सकते हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जीपीएस भी नया डेस्टिनेशन दिखाएगा। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो काम अवॉइड कर रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, मस्त प्लेलिस्ट लगाओ लाइफ में और अपना काम करते जाओ। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, माइंड को फ्रेश आइडियाज की फ्रेश एयर दो, पुरानी सोच का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का टाइम आ चुका है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 30। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, बिजनेस या मनी को लेकर टेंशन कम करो, कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करता है, बिलीव इन योर सेल्फ। लकी कलर इज ब्लैक, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हर गोल अचीव करना जरूरी नहीं है, कभी कभी टारगेट एडजस्ट करते हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, डिटूर करने पर भी डेस्टिनेशन पर ही पहुंचोगे। लकी कलर इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, किसी की नेगेटिविटी को फ्यूल बना लो, आज प्रूव मत करो, सिंपली शाइन करो, सक्सेस खुद इंट्रोडक्शन देने आएगी। लकी कलर इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 33। एंड दैट्स इट, योर राशि जोन पार्ट 1 and 2 आर डन। मैं और प्रिसला तुम्हारे साथ में मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप। मीनवाइल चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बस मेरे दोस्त, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं पर रैप अप करने का टाइम आ चुका है। मेरा नाम है प्रिसला, लेकिन जाने से पहले एक मस्त फन अपडेट देकर जाती हूँ। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जारेड आइजकमैन ने एक इंटरेस्टिंग प्रॉमिस किया है। अगर यूएसए फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत जाता है तो नासा एक फुटबॉल और यूएस टीम की साइंड जर्सी मून पर भेजने वाले हैं। उन्होंने बड़ा फिल्मी कॉन्फिडेंस भी दिखाया है और कहा है, लोग कहते हैं यूएसए वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, लोगों ने मून लैंडिंग के बारे में भी यही कहा था। अब देखो, ट्रॉफी यूएसए आए या ना आए, एक बात तो पक्की है कि फुटबॉल फीवर जो है वो अर्थ से लेकर मून तक पहुंच रहा है। वैसे हम देसी लोगों का बस चलता तो हम एक डब्बे में घर का बना खाने का एक डब्बा, उसके साथ साथ फरसान पापड़, उसके साथ साथ कुछ स्वीट डिशेस, कुछ हमारी फैमिली फोटोज, कुछ इंडियन स्नैक्स और चाय कॉफी ब्रेकफास्ट तो पैक करके पक्का भेजते हो, और वहाँ भटकते हुए किसी एलियन को मिल जाता और वो एंजॉय करता हमारी डेलिकेसीज। वैसे इससे पहले ही एलियंस ये बैड जोक सुनकर मुझे ही पकड़ने आ जाए, लेट्स पैक इट अप हियर। आज के लिए इतना ही, यू बी गुड, खाओ पियो, ऐश करो, और अगर मुझे मिस करोगे तो सोशल्स पे जाओ ना, यानी कि मेरा हैंडल इंस्टा और एक्सपर्ट ढूंढो, एट मिर्ची प्रिस इज द नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ही रस्ते में है चाय की थड़ी, और वो जो चाय की थड़ी है ना, उससे मैं कह रही होती हूँ कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, हो प्यार हो जाएगा। डोंट यू थिंक कि 90s के गानों से लाइफ कितनी मेलोडियस हो जाती है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। एंड विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो अंताक्षरी खेल खेल कर हम बड़े हुए हैं ना, इसका असर ये हुआ है हम पर कि हम लाइफ को ही ना म्यूजिकल बनाते रहे हैं। बिकॉज ऑफ अंताक्षरी हमारे गानों की नॉलेज स्ट्रांग हुई, और ऐसी स्ट्रांग हुई कि हम अपनी गानों की इस नॉलेज को हर कहीं इस्तेमाल करते हैं, हर सिचुएशन में, हर मौसम पर। हमारी हाजिर जवाबी भी नवाबी है, बिकॉज ये शब्दों के साथ नहीं, संगीत के साथ निकलती है बॉस। आप बताओ, आपके दिमाग में अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके तहत कौन सा गाना बज रहा है? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: समीरा रेड्डी को वैसे हमने जो पहली बार देखा शायद वो और आहिस्ता पंकज उदास साहब का जो एल्बम था उसमें देखा होगा, राइट? और कितनी प्रिटी लग रही थी यार उसमें। और जब यही बंदी उठकर मूवीज में आ गई ना तो मैं तो और बड़ी फैन हो गई यार इस बंदी की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और समीरा रेड्डी की डेब्यू फिल्म विच वॉज मैंने दिल तुझको दिया। ये फिल्म हालांकि हिट नहीं हुई थी लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज काफी कलरफुल फिल्म थी, नहीं? एंड वैसे बाय द वे ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है लेकिन ये वो फिल्म है जिसे सुहेल खान ने डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है एंड ऑफकोर्स ये तो सभी को पता है कि उन्होंने इस फिल्म में एक्ट किया है बिकॉज दिस वॉज हिज एक्टिंग डेब्यू। और इसी के साथ वो बॉलीवुड में सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी बन गए टू टेक ऑन अ ट्रिपल रोल इन अ मेजर फिल्म एट वन टाइम। बट डिस्पाइट बीइंग अ कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, सोहेल अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे और वो एक टेक को मल्टीपल टाइम्स दिया करते थे। बल्कि क्रू मेंबर्स का तो ये भी कहना था कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ना बड़ी इंटेंसिटी के साथ रिव्यू किया करते थे आफ्टर द शूट। एंड देयर वाज दिस बाइक वाला सीन इन द मूवी इफ यू रिमेंबर, यू नो उस सीन के अंदर जो मोटरबाइक स्टंट था वो सोहेल ने खुद किया था लेकिन बाल बाल बचे थे उस स्टंट को करते हुए बिकॉज उनको इंजरी होने ही वाली थी और वो ये जो स्टंट था वो बॉडी डबल के बिना कर रहे थे तो जो शूट था उसको पूरे एक दिन के लिए रोक दिया गया बिकॉज ये जानना जरूरी था कि इज सोहेल डूइंग फाइन और नॉट। और जब वहां से हरी झंडी आ गई कि हाँ भैया एक दिन का रेस्ट ले लिया, आई एम टोटली फाइन, वी कैन मूव फॉरवर्ड, तब जाके शूट जो है वो वापस से शुरू हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म में ना सिर्फ सुहेल खान ने एज एन एक्टर डेब्यू किया है बल्कि उनके बड़े बेटे निर्वाण खान ने भी डेब्यू किया है। बताऊंगी कुछ ही देर में, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू फिल्म मैंने दिल तुझको दिया सिर्फ सुहेल खान की एक्टिंग डेब्यू ही नहीं थी, उनके बड़े बेटे निर्वाण की भी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म के अंदर सुहेल खान और जो उनकी पूरी गैंग है वो सब मिलकर एक बड़ा ही फंकी सा गाना जो इस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट गाना इज शा ना ना। क्या गाना था, ओहो हो। खैर, गाने पे नहीं जाते, म्यूजिक पे नहीं जाते, इस गाने के पिक्चराइजेशन पे जाते हैं। इस गाने में अगर आपको याद होगा तो देयर वाज दिस वन सीन जहां पर सुहेल खान एक लेडी के पास जाते हैं और उस लेडी का प्यारा सा बच्चा होता है कुछ ही महीनों का, उस बेबी को गोदी में उठाते हैं और समीरा रेड्डी को लुक दे रहे होते हैं। ऑन स्क्रीन तो वैसे वो समीरा रेड्डी को लुक दे रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन ही माइट बी लुकिंग एट द वुमन, बिकॉज दैट वुमन वॉज हिज एक्स वाइफ सीमा, और वो जो बच्चा था दैट वॉज हिज एल्डर सन निर्वाण खान। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम लकी चार्म फॉर हिज फिल्म ही हैड हिज फैमिली कम ऑन स्क्रीन एज वेल। यही नहीं, सुहेल खान ने तो अपने कॉलेज के जो गैंग मेंबर्स थे उन्हें भी इस फिल्म में कास्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि ये जो कॉलेज कैमराडरी वाली जो वाइब है ना वो बनी रहे और वो ना दोस्तों के साथ ही आएगी। तो उन्होंने काफी सारे अपने दोस्तों को भी उठाया ताकि वो अपनी रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आए और उनकी फिल्म कर जाए। वैसे ये फिल्म हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूवी हो सकती है, लेकिन सुहेल खान जिनकी एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी उनके लिए दिस मूवी सीम्स टू बी एन इमोशनल। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक मूवी के पीछे वैसे ही इमोशंस होते हैं जो खाना बनाने के पीछे होते हैं, 'cause when someone cooks ना तो पूरे दिल से, मेहनत से, लगन से, चाह से और आस से खाना बना रहा होता है इंसान कि बस सबको पसंद आ जाए। अगर वो डिश अच्छी नहीं होती है तो लोग उसमें बुराई करने में जरा पीछे नहीं हटते हैं, और जिस बंदे ने इतनी एनर्जी दी है, इतना टाइम दिया है अपना, उस बंदे को डेफिनेटली बुरा तो लगेगा ही। सेम इज विद फिल्म्स, कि जब कोई फिल्म बन रही होती है ना तो मेहनत तो बॉस उतनी ही जाती है उस फिल्म को बनाने में जितनी की एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर में गई होगी। उतनी ही मेहनत से, उतने ही जज्बे के साथ और उतनी ही गुड एनर्जीज पास करते हुए एक फिल्म की शूट हुई होती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो क्या होता है, अगर वो फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं हुई ना तो ऑफकोर्स उसे ट्रोल किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। सेम इज विद द कुकिंग ऑल्सो, यार इतने दिल से बनाया, अच्छा नहीं बना तो बुरा भला क्या दिया, दिल तो टूटेगा। जब भी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो यार उसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि फिल्म तो फ्लॉप हो गई, बकवास फिल्म है, जाना ही नहीं है। लेकिन हम ये भी तो सोचें कि किसी ने उसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कहता है दिल, कैन यू बिलीव इट, इस शो को 23 साल हो गए यार।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल शो यार, बड़ा क्यूट सा शो था। अ स्टोरी दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्वीट लिटिल फैमिली जो एक स्वीट लिटिल जगह में रहती है, व्हिच वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और करिश्मा जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी, जिसको इनिशियली काम्या पंजाबी ने प्ले किया था, एंड देन दी एक्ट्रेस पल्लवी कुलकर्णी, उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया आगे जाकर। तो ये सीरियल इस फीमेल कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन द फनी पार्ट इज कि सीरियल में राम कपूर और गौतमी कपूर ने एक साथ तो काम किया, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम नहीं किया, क्योंकि गौतमी कपूर प्लेज अमन वर्मा'स वाइफ का रोल एंड राम कपूर की वाइफ का रोल निवेदिता भट्टाचार्य ने प्ले किया है। बिकॉज एट दिस टाइम राम और गौतमी की शादी हुई नहीं थी। और अगर इस शो के कॉन्सेप्ट की बात की जाए ना, तो यार ये वो शो था जिसने की किचन पॉलिटिक्स वाले जो सीरियल हुआ करते थे, जिनका की मार्केट में डोमिनेशन था, उनको साइड में कर दिया और लोगों को कुछ नयापन चाहिए था देखने के लिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन दिस शो कहता है दिल वो लॉन्च के लिए तैयार हो गया था। और अभी के लिए हम भी लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक जस्ट फॉर यू, सो एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बाजीगर में भले ही शाहरुख खान वॉज द विलन, लेकिन मेरे लिए तो वो हीरो ही थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी जहां पर उन्होंने एंटी हीरो रोल प्ले किया था, लेकिन हुआ ये कि वो प्ले तो विलन का रोल कर रहे थे, बट स्टिल ही गॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ सुपरस्टार आफ्टर दिस फिल्म। और आपको पता है, शाहरुख खान का रोल, यानी कि विक्की मल्होत्रा, अजय शर्मा के वो जो डबल रोल्स थे, वो पहले सलमान खान को ऑफर हुए थे, उसके बाद शाहरुख खान के पास गए। अब सलमान खान को ये रोल्स जब ऑफर हुए तो उन्होंने ना इसीलिए कर दिया क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, और उनको ये थोड़ी ना पता था कि नेगेटिव होते हुए भी ये जो कैरेक्टर है ये दुनिया का दिल जीत लेगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म में अनु मलिक के छोटे भाई डब्बू मलिक ने भी काम किया है। वो प्लेड द रोल ऑफ रवि शुक्ला, जो कि शिल्पा शेट्टी के कॉलेज फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे थे, जिसको की मारने के बाद सुसाइड नोट नहीं लिख दिया था शाहरुख खान के कैरेक्टर ने। एग्जैक्टली दैट पर्सन इज अनु मलिक के छोटे भाई, एंड ऑल्सो अमाल मलिक एंड अरमान मलिक के पापा भी। हाँ, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डुप्लीकेट फिल्म का सिर्फ नाम ही डुप्लीकेट नहीं है, इस फिल्म का एक गाना है जिसकी धुन भी डुप्लीकेट हुई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये जो नॉटी सा गाना है ना कि एक शरारत, अरे मैं क्या गाऊं यार, आप ही को सुना देती हूँ।

Well, this is exactly that song, जिसकी की धुन उठाई गई है एक इंग्लिश गाने से, which was sung by Laura Allen. इस गाने का नाम है Slip and Slide, and गाना कुछ यूं सुनाई देता है.

Isabel. Exactly my point, boss. And वैसे आप भी मुझे बता सकते हो अगर 90s के या early 2000 की ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई गाना जिसके बारे में आपको है मुझे बताना कि ये कहीं से कॉपीड है या इंस्पायर्ड है तो DM करो on my Instagram handle which is मिर्ची सारा और अभी के लिए coming up the next track you stay tuned with me सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची it's hot

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार ये QR कोड स्कैन करके मेन्यू देखना और ऑर्डर करना फील नहीं देता यार।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऑफ लेटली आई कैन सी कि कैफेज और रेस्टोरेंट्स में हर टेबल पर स्कैनर लगा हुआ होता है। स्कैन करो, मेन्यू देखो और ऑर्डर कर दो। लेकिन जैसे चावल हाथ से खाने में मजा आता है ना, वैसे ही ऑर्डर देने से पहले मेन्यू को फील करने में, उसके पन्ने पलट पलट कर उसमें गुम हो जाने में मजा आता है कि अरे यार मुझे एपेटाइजर्स में चिकन विंग क्यों नहीं मिल रहा, तुझे तो मिल रहा है। एंड देन जवाब आता है कि तू गलत पेज पर चेक कर रही है पागल। एंड देन आल्सो आई एम इंटरेस्टेड कि किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट ने मेन्यू को डिजाइन कितने अच्छे से किया हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब बताओ ये बात फोन पर ऐप से मेन्यू देखने में कहाँ आती है यार। पहले किताबें

और अब मेन्यू दोनों ही फोन पर आ गए। और जिस तरह से डेटिंग लाइफ चल रही है ना, लगता है कि अब पक्के रिलेशनशिप्स भी फोन पर ऐसे ही स्कैन कर कर ही मिलेंगे, हकीकत में तो ना मिल पा रहे। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज एक वर्ड का मीनिंग ढूंढते ढूंढते तुम्हारी जो याद आई है ना यार, बस उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना तो मैं बिल्कुल ही भूल गई, सिर्फ तुम्हारी यादों में खो गई। कैसे तुम हमारे लिए हर कभी मौजूद हुआ करती थी हमारे बैग में, मतलब बाकी सारी बुक्स एक तरफ और तुम ऐसे हमारे बैग में हुआ करती थी जैसे कि तुम कोर्स मटेरियल हो और तुम एक तरफ, इतना भार था तुम में। हालांकि तुम हमारे बैग में जो फिट होती थी वो तो छोटी सी थी और थोड़ी मोटी सी थी, और जो घर में मम्मा के पास रखी हुई थी वो तो दादाजी थे भाई। लेकिन मुझे ना तुम्हें उठा के बड़ा इम्पोर्टेंट सा फील हुआ करता था, एज इफ मैं कोई स्कॉलर हूँ। लेकिन जब तुम्हारे अंदर झांकती थी तो समझ में आता था, बेटा अभी सीखना तो बहुत बाकी है। इतने सारे लव्स थे तुम्हारे अंदर कि एक को ढूंढने जाते थे तीन का मतलब पूछना पड़ता था। और सबसे मुश्किल तो ये होता था कि हम किसी वर्ड को उठा के उसका मतलब तो ढूंढ ले, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे ढूंढे। वो प्रोनाउंसिएशन मुझे कभी समझ में आता था, कभी नहीं आता था। आज के गूगल की तरह नहीं कि आपने बस एक वर्ड का मतलब ढूंढा, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी उसके साथ आ जाता है और गूगल ही बता देता है कि क्या प्रोनाउंसिएशन है। पता है तुम्हें, गूगल नामक आज एक चीज आ गई है हमारी दुनिया में जो तुम्हारा काम कर रही है। लेकिन हाँ, एक बात कह सकती हूँ, तुम्हारी जगह नहीं ले पा रही है, क्योंकि तुम्हारी तो बात ही कुछ और थी ना यार। जैसे ही मैम पूछा करती थी कि बताओ कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, तो बस हम शान से तुम्हें डेस्क पर रखा करते थे और बड़ी गंभीरता से तुम्हारे पन्ने पलटा करते थे, मानो किसी गहरे सीक्रेट की खोज कर रहे हो। यार क्या दिन थे वो। अब तो ना तो कोई तुम्हें बैग में रखता है, ना ही किताबों की अलमारी में तुम्हारी कहीं जगह बची, लेकिन दिल में तुम हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं थी, तुम तो हमारे स्कूल के दिनों की वो साथी थी जिसने हमें लफ्जों से दोस्ती करना सिखाया। चलो यार अब ज्यादा इमोशनल नहीं होते, तुम्हारी जैसी डिग्निफाइड दोस्त को चीजी बातें कहाँ पसंद होगी। लेकिन हाँ, एक दिन तुम्हें फिर से मिलूंगी मैं, बिना वाईफाई के, बिना ऑटो करेक्ट के, बस तुमसे एक पुरानी मुलाकात के लिए। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो कभी तुम्हारे अंतर लफ्जों के मतलब निकाल लिया करती थी, लेकिन आज जिंदगी के मायने बताने के लिए कोई नहीं है सिवाय जिंदगी के। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I did not realize कि रानी मुखर्जी के सावलेपन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ये दूसरा गाना है जो उनपे बनाया गया है। कैसेट के साइड ए का चौथा गाना
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: कहीं प्यार ना हो जाए मूवी से सावरिया रे ओ सावरिया। वेल, जब फिल्म में इस गाने को पिक्चराइज किया गया है तो ऐसा दिखाया गया है कि इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन कि यू नो ये लोग गाना गा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए हैं। एंड सबसे मजाकिया चीज इस पूरे गाने के अंदर इज मुनीश बहल, जिनको हमने पूरी जिंदगी या तो सादे रोल्स में देखा है या विलनस रोल्स में देखा है। यहाँ पर ही इज टोटली इन टू द सीन एंड कैरेक्टर ऑफ अ कॉमिक जीजू। बट हाँ, ये बात भी सच्ची है कि स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाली रानी मुखर्जी रही हैं, जिन्होंने कि अपने सावलेपन को लेकर कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई कि वो इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या वो खुश नहीं है या वो इसको कवर करना चाहती हैं। अगर ये गाना उनके ऊपर बना है, उनके सावले रंग के ऊपर बना है, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए बना है, दैट मीन्स कि रानी मुखर्जी ओन्स एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद हरसेल्फ, हर कलर, हर पर्सनालिटी, व्हिच इज अ बिग थिंग इन द इंडस्ट्री, जहां पर लोगों को उनके लुक्स और कलर से जज किया जाता है। एंड आज तो हम डेफिनेटली इस बात के गवाह हैं कि एवरीबडी इंडस्ट्री में हो या ना हो, दे जस्ट वांट अ कोरियन स्किन। हालांकि हम इंडियंस हैं एंड वी वांट कोरियन स्किन। दूसरी चीज, ये ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स, इंजेक्शंस एंड सीरम्स एंड व्हाट नॉट जो आ गए मार्केट में, उसको लेकर भी इतना ज्यादा रेज आना। एंड आई फील कि यार, जैसे हम हैं वैसा हम अपने आप को पसंद क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक रानी मुखर्जी से ये चीज सीखना तब और आज भी वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट बिगनिंग। चलो जी, नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अगला गाना यही वाला आ रहा, एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1984 की फिल्म उत्सव वॉज प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में उन्होंने एक रोल भी किया था जो इनिशियली अमिताभ बच्चन साहब करने वाले थे, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन साहब ने ये रोल नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस पर्सनल रीजंस, क्योंकि उत्सव फिल्म में रेखा थी ना। अच्छा, एक और फिल्म जिसका हम अभी गाना सुनने वाले हैं, उसमें जो रोल अमिताभ बच्चन ने प्ले किया वो पहले राजेश खन्ना प्ले करने वाले थे, और जो रोल राजेश खन्ना ने प्ले किया वो पहले अमिताभ बच्चन प्ले करने वाले थे, लेकिन फिर राजेश खन्ना साहब को जो रोल पसंद आया उन्होंने वो रोल ले लिया, यानी कि अमिताभ बच्चन वाला। दिस फिल्म वॉज 1973 की नमक हराम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लिरिसिस्ट अनजान साहब ने 1953 से अपने करियर की शुरुआत की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको काम मिलना शुरू हुआ लेकिन उनका काम खास पॉपुलर नहीं हुआ। 60s में भी उनको काफी चर्चित फिल्में मिली जैसे कि गोदान, बहारें फिर भी आएंगी, बंधन। उनके कुछ गाने पॉपुलर भी हुए लेकिन एक वो जो ड्यू सक्सेस, ड्यू रिकग्निशन है वो उनसे बहुत दूर था। 70s में भी उनके गाने पॉपुलर हुए जैसे कि दो अनजाने फिल्म का एक गाना अगर आपको याद हो, लुक चिप जाओ ना अल्ले आओ ना, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इनफैक्ट उनके ज्यादा पॉपुलर हिट गाने अमिताभ बच्चन साहब पे ही पिक्चराइज्ड हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ओ भाई भाई भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि सिंगर शैलेंद्र सिंह एक्टर भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनका ये एक्टिंग वाला स्टंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैंने एक रैंडमली एक फिल्म देखी, अग्रीमेंट फिल्म का नाम है ये, उत्पल दत्त साहब हैं इसमें। और उत्पल दत्त साहब की मुझे कोई भी फिल्म दिखती है ना यूट्यूब पे, मैं फट से देखना शुरू कर देती हूँ। हालांकि इस फिल्म में उनका टैलेंट ऐसे वेस्ट कर दिया गया है। सो इस फिल्म में रेखा है मेन लीड में, जो एक फेमिनिस्ट बनती है। और उनका फेमिनिज्म का डेफिनेशन थोड़ा सा ट्विस्टेड सा है। मतलब वो शादी करने और एक टिपिकल बहू बनने के खिलाफ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया चेंज होता है, और जैसे जैसे नजरिया चेंज होता है फिल्म में उनका लुक भी चेंज होता है। शुरुआत में ऐसे बॉय कट बाल होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर एकदम लंबे बाल हो जाते हैं। सो इसमें उनका जो पति का रोल प्ले करते हैं ना, पति भी कैसा कॉन्ट्रैक्ट वाला पति, मतलब एक अग्रीमेंट होता है शादी का, तो उसमें उनका पति प्ले करते हैं शैलेंद्र सिंह, सिंगर। मूवी देखो खास नहीं है, मैंने तो यूं ही टाइम पास के लिए देखी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। बट शैलेंद्र सिंह की आवाज टोटली रिकमेंडेड। उनकी आवाज में गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अभिमान फिल्म को लेकर एक रूमर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रूमर ये था कि इसकी स्टोरी किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा ठाकुरता की मैरिड लाइफ पर बेस्ड है। इन दोनों की मैरिड लाइफ में मेन दिक्कत ये थी कि रूमा करियर ओरिएंटेड थी, उन्हें अपनी कला अपने काम से प्यार था, जबकि किशोर कुमार चाहते थे कि वो ज्यादा ध्यान अपने घर पे दें, घर संभालें। उनकी थोड़ी कन्वेंशनल सोच थी। खैर, किशोर कुमार को जब इस रूमर के बारे में पता चला तो उन्होंने इस फिल्म के बस दो गाने गाए थे, बाकी भी उन्होंने गाने थे लेकिन वो गाने फिर उन्होंने छोड़ दिए। इसीलिए फिल्म के कुछ गाने किशोर कुमार की आवाज में हैं, कुछ मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हैं। यहाँ जो हम सुनेंगे वो है किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

1987 की सरप्राइज हिट फिल्म थी ईमानदार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में थे संजय दत्त, फरहा एंड रोहन कपूर, जो सिंगर महेंद्र कपूर साहब के बेटे थे। रोहन एक्टिंग भी करते थे, सिंगिंग भी करते थे। इनफैक्ट इस टाइम पे वो काफी पॉपुलर फिल्मों में आए थे। एक तो ये ईमानदार हो गई, फिर यश चोपड़ा साहब की फासले एक मूवी थी जिसमें फरहा के साथ थे, बट समहाउ ज्यादा चल नहीं पाए। लेकिन ईमानदार फिल्म का ये गाना क्या चला क्या था, दौड़ा था, उड़ा था। सुन लेते हैं। प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी की कॉम्पोजिशन, संग बाय आशा भोसले जी एंड सुरेश वाडकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: भाई शम्मी कपूर साहब बहुत सारी बातों के लिए पॉपुलर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन अर्ली 80s में उनकी पॉपुलैरिटी में एक और चीज जुड़ गई और ये चीज थी एक एड। और आपको पता है इनके बड़े भाई राज कपूर इनके इस एंडोर्समेंट के बहुत खिलाफ थे, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने ये एड क्यों की, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई डिड एन एड विद अशोक कुमार ओनली फॉर द रीजन दैट आई हैव नेवर वर्क्ड विद अशोक कुमार। इट इज माय, यू नो, ही इज माय आइडल एंड आई वांटेड टू वर्क एंड आई नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑफर्ड कि जी एक एड है पान प्राग का, दादा मुनि कर रहे हैं, आप करेंगे? हाँ मैं जरूर करूंगा। I didn't know it was going to get so popular. The ad became so popular that people knew me more by the Pan Prag ad than by Jangli. They forgot I was in movies.
0: Well, 80s में ये ad बहुत popular हुई थी और ये ad sort of catalyst थी। इसके बाद फिल्म स्टार्स इंडोर्सिंग ब्रांड्स वाले सीन में ना बहुत सारे चेंजेस आए थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। ये चांद

0: Energy. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

घर फिल्म का गाना ब्यूटीफुल सॉन्ग मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और घर टॉपिक पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल गजलें शेर भी लिखे गए हैं। जैसे अहमद फराज साहब कहते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जॉन एलिया साहब कहते हैं, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। बशीर बद्र साहब क्या लिखते हैं सुनिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हार्ड हिटिंग लाइंस हैं ये, सुनिए आप। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सबके घर परिवार सेफ रहें, आबाद रहें, यही है मेरी विश। मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

आपको पता है 1989 में मैंने प्यार किया में काम करने से पहले मोनीश बहल 4-5 फिल्मों में काम कर चुके थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन क्योंकि उनका करियर एज एन एक्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, उन्होंने अपने दूसरे पैशन फ्लाइंग को अपना करियर बनाने का सोचा। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली, उनको पायलट बनने का लाइसेंस वगैरह भी मिल गया। लेकिन इसी दौरान सलमान खान जो उनके दोस्त थे और मैंने प्यार किया फिल्म में एज हीरो लिए जा चुके थे, उन्होंने नेगेटिव रोल के लिए मोनीश बहल का नाम रेकमेंड किया। इसके बाद इनका एक्टिंग वाला करियर फिर से उड़ान भर गया और उड़ान वाले पायलट वाले करियर को साइड में रख दिया गया। चलिए, जिसकी गाड़ी जहाँ चलनी होती है चल जाती है, जिसका एरोप्लेन जहाँ उड़ना होता है उड़ जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: भाई पुरानी फिल्मों के एक बहुत ही जाने माने राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे राजेंद्र बेदी और उनके बेटे थे नरेंद्र बेदी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनकी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी थी रोज स्टूडियोज, और लेट 60s अर्ली 70s में एक फिल्म में डायलॉग्स लिखने के लिए ये कोई बंदा ढूंढ रहे थे। तो इनको पता चला कि ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो बहुत ब्रिलियंट प्लेज लिखते हैं। ये बंदे थे कादर खान साहब। इस बारे में कादर खान साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था सुनिए।
1: एक बार राजेंद्र सिंह बेदी या मेरे पास आए, बोले यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जवानी दीवानी, मैं चाहता हूँ आप उसके डायलॉग लिखें। दूसरे दिन मुझे उन्होंने रोज मूवीज में बुलाया, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और मुझे उन्होंने कहा कि ये अभी हम ये महीने भर बाद ये पोर्शन कर रहे हैं, वो मुझे डिटेल में बताया। तो मैं अब सीधा जो है क्रॉस मैदान गया। क्रॉस मैदान में अब वहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं एक कोने में बैठ के पेड़ के नीचे डायलॉग लिख रहा हूँ। बॉल बार बार आके मुंह में भी लगता है, तो मैं बोलता था भाई जरा संभाल के खेलो यार, तो सॉरी बोलते थे। फिर मैं लिखा जा रहा हूँ, करते करते मैंने 4-5 घंटे में सब लिख डाला था।
0: क्या हुआ जब खान साहब पहुँचे बेदीज के पास, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइटर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 1972 की फिल्म जवानी दीवानी के मेकर्स राजेंद्र सिंह बेदी एंड नरेंद्र सिंह बेदी कादर खान साहब के पास पहुंचे फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने खान साहब को एक महीने का वक्त दिया कि आप आराम से डायलॉग लिखो, लेकिन खान साहब 3-4 घंटे में डायलॉग्स लिखकर शाम को इनके पास पहुंच गए। और जब ये पहुंचे तब क्या हुआ, खान साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: जब तक वो लोग पी के थोड़ा टाइट हो चुके थे, मुझे देख के उन्होंने कहा, इन्हें गाली दे के कहा कि इसको समझ में नहीं आया है, ये पूछने के लिए फिर आया है। मैंने कहा सर आपने गाली क्यों बकी मुझे? और नहीं यार कहाँ गाली बकी, मैंने कहा आई कैन रीड योर लिप्स। नहीं बोले यार तुम फिर आगे पूछने के लिए, इतना डिटेल में समझाया। बोले मैं पूछने नहीं आया हूँ, मैंने डायलॉग लिख लिए हैं। व्हाट? अरे बोले यार हम डायलॉग राइटर को देते हैं सीन तो एक दिन और बाद में लेकर आता है। मैंने सीन सुनाए तो सीन सुनाता गया, एक एक उठ उठ के बैठने लगा। नरेंद्र बेदी उठा, रणधीर कपूर उठा, उठते उठते सब बोले यार क्या बात है, ये नेक्स्ट हफ्ते से काटा लो। और पूरी इंडस्ट्री में इन्होंने वाविला मचा दी कि यार कमाल उसने सीन लिखे। और एक महीने भर बाद उन्होंने पूरी अपने काम खत्म कर लिया, मुझे 1500 रुपए दिए।
0: तो ये थी कादर खान साहब के ब्रिलियंट राइटिंग करियर की शुरुआत। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: तो जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने जो आइकॉनिक रोल निभाया था, उस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस पता है कौन से एक्टर थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसके लिए फर्स्ट चॉइस थे धर्मेंद्र साहब जी, प्रकाश मेहरा। इस स्टोरी के लिए धर्मेंद्र को कास्ट करना चाहते थे। धर्मेंद्र ने अपना कमिटमेंट भी दिया था और जंजीर फिल्म के राइट्स भी उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि धर्मेंद्र बिजी हो गए, इस फिल्म के लिए शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। और इसी दौरान उनको एक और स्क्रिप्ट पसंद आई जिसके राइट्स प्रकाश मेहरा साहब के पास थे। तब उन्होंने ये दो स्क्रिप्ट्स एक्सचेंज की, यानी कि जंजीर फिल्म प्रकाश मेहरा जी को दे दी उसके राइट्स और एक और फिल्म के राइट्स खुद ले लिए। ये फिल्म थी कहानी किस्मत की, जो धर्मेंद्र जी के दोस्त डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी ने फिर डायरेक्ट की। ये वही फिल्म है जिसमें वो मस्त गाना है जो हम सुनने वाले हैं, जिसमें क्या हैंडसम लग रहे हैं धर्मेंद्र साहब भाई, और क्या उछल कूद मचाई उन्होंने इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स इज झूलती फिल्म का होठों में ऐसी बात। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एस डी बर्मन साहब ने क्या कंपोज किया है ये गाना, और क्योंकि फिल्म में गाना एक डांस ट्रूप परफॉर्म कर रहा है गैंगटॉक किंगडम ऑफ सिक्किम में, तो वहाँ के म्यूजिक की पूरी फील दी गई है, उस हिसाब से इसका म्यूजिक बनाया गया था। अच्छा, जब ये फिल्म शूट हो रही थी लेट 60s में, तब सिक्किम इंडिया का ऑफिशियली पार्ट नहीं बना था। इंडिया और सिक्किम के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई हुई थी, लेकिन इट वॉज इन 70s व्हेन सिक्किम ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। एनीवे, तो यू नो वहाँ की एक रॉयल किंगडम का फील देने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, एक गोंग का, जो कि एक मैलेट या हथौड़े से प्ले किया जाता है, जो अक्सर आपने मोनेस्ट्रीज में देखा होगा। जब फिल्म का गाना रिकॉर्ड होना था तो जो गोंग मंगाया गया उसका वो मैलेट, उसका हथौड़ा मिसप्लेस हो गया, तो म्यूजिशियन अमृत राव जी ने अपने हाथों से वो म्यूजिक बजाया है, और इसीलिए इस गाने में उसका एक बहुत ही अलग डिस्टिंक्टिव सा साउंड आया है। आप ध्यान से सुनिएगा जब हम ये गाना सुनेंगे अभी पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची 101.3।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yaar, you can't take pride in your son's bad behavior, huh?
2: Shruti.
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और इमेजिन, क्या आपकी मम्मी या आपके पापा आपके किसी बुरे बर्ताव को लेकर किसी पॉडकास्ट पे आपकी तारीफ के पुल बांधना चाहेंगे? नहीं ना. सो बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट इज कि दिया मिर्जा रिसेंटली सोहा अली खान के पॉडकास्ट पे गई और उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक इंसिडेंट शेयर किया जहां उनके बेटे ने नारियल पानी वाले डिलीवरी एजेंट को सुना दिया था. सो द थिंग वॉज कि वो जो नारियल पानी वाला है वो नारियल पानी लेकर आया उनके घर पे, बट गलती ये कर दी कि वो नारियल पानी प्लास्टिक बैग में लेकर आया था विद अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एज वेल, जिसपे उनके बेटे ने ना आओ देखा ना ताओ बस डिलीवरी एजेंट को खरी खोटी सुना दी कि आप हमारे घर पे कैसे लेके आ सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड प्लास्टिक बैग, आपको नहीं पता है कि ये एनवायरमेंट के लिए कितना बुरा है एंड ऑल दैट जैज. चलो ठीक है, एट वन पॉइंट आई अंडरस्टैंड कि वो सही बात समझाने की कोशिश कर रहा था एंड आई अग्री दैट ही इज अ किड, इसलिए उसको शायद पता नहीं होगा कि किस तरीके से अपनी बात रखनी है. बट एज अ समझदार पेरेंट दिया मिर्जा को अपने बच्चे की इस हरकत को कॉल आउट करना चाहिए था रादर देन बोस्टिंग अबाउट इट इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर. एंड दैट इज द रीजन माई फ्रेंड दिया मिर्जा फिलहाल इंटरनेट पे ट्रोल की जा रही है विद द हैशटैग एंटाइटल्ड एरोगेंस. बाकी आपकी इस पूरी चीज पे क्या राय है वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके. टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: एम कुमार, फॉलो मी ऑन माई चैनल
1: रेडियो मिर्ची।
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग स्पेशल।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो
3: Punjab.